0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: நேர்களே, இன்றிரவு 7:30 நமது முதன்மை அலைவரிசையில் உழவர் உலகம். இதில் கடலூர் மாவட்டம் நடுவீரப்பட்டு கிராம உழவர் கே ஜெயக்கொடி அவர்களுடன் நேர்முகம் இருக்கோம். நேர்முகம் காண்பவர் ஸ்ரீனிவாச முருகன் அவர்கள். அதைத் தொடர்ந்து நாட்டுப்புற பாடல் மற்றும் பண்ணைச் செய்தி ஆகியவை இடம்பெறும்.